0: आवाज़ें ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ें ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते प्यारे सुनने वालों, रेडियो आवाज ताजिक की हिंदी भाग की जारी है और आपका स्वागत है।

हमारे प्रसारण में आप सुन सकते हैं स्थायी और विदेशी समाचार, ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन के बारे में दिलचस्प बयान, विश्लेषण, विशेषज्ञों से बातचीत। आज की जिम्मेदारियां में इस प्रोग्राम की अदीति रामजा और प्रोड्यूसर अब मंसूर इस्माइल आपका समाचार भाग में स्वागत करते हैं और हम मुख्य खबरों से शुरू करेंगे।

0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और साढ़े 4 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते प्यारे सुनने वालों, रेडियो आवाज़ ताजिकी हिंदी भाषा की जारी है और आपका स्वागत है।

हमारे प्रसारण में आप सुन सकते हैं स्थायी और विदेशी समाचार, ताजिकिस्तान के नीतिक सांस्कृतिक सामाजिक जीवन के बारे में दिलचस्प पहलुओं विश्लेषण विशेषज्ञों से बातचीत। आज की जिम्मेदारियों में इस प्रोग्राम की दीदी रामजा और प्रोड्यूसर अबू मंसूर इस्माइल आपका समाचार भाग में स्वागत करते हैं और हम मुख्य खबरों से शुरू करेंगे।

0: Vartman gardnaon aur mahatvapuran rajnitik mudon par nazar.
1: Radio Awaze Tajiki Hindi Anubhag se 105.5 FM.
0: नमस्ते प्यारे सुनने वालों यह दिलाना है कि आप सुन रहे रेडियो आवाज ताजिक आप रेडियो आवाज ताजिक की हिंदी अनुभाग के कार्यक्रमों को सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम का विषय है तजिकिस्तान विदेशियों के दृष्टिकोण से राजधानियां राज्या व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और देश के प्रशासनिक एवं राजनीतिक केंद्र होती है तजिकिस्तान गणराज्य की राजधानी के रूप में दुशांबे शहर आज तजिकिस्तान गणराज्य के राज्यत के विकास के एक नए चरण में एक विशेष दर्जा प्राप्त कर चुका है तजिकिस्तान गणराज्य की राजधानी दुशांबे हाल के वर्षों में उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बन गई है ये शहर न केवल महत्वपूर्ण राष्ट्रीय निर्णय लेने का स्थान बन गया है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तजिकिस्तान को प्रस्तुत करने का एक मंच भी बन गया है तजिकिस्तान गणराज्य की राजधानी होने के नाते दुशांबे के जुड़वान शहरों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में विदेशी देशों की राजधानियों और प्रमुख शहरों के साथ घनिष्ठ और सक्रिय संबंध है ये सहयोग सांस्कृतिक आदान प्रदान अर्थशास्त्र विज्ञान शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों के आधार पर विस्तारित हो रहा है पर्यटन देश और राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करता है प्रत्येक ताजिक नागरिक को इस दिव्य देश को उसके शिल्प रीति रिवाजों परंपराओं सुंदर और मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों विशाल झीलों और पहाड़ों और ताजे व स्वच्छ जल से पूरी दुनिया को परिचित कराना चाहिए तजिकिस्तान गणराज्य अपनी खूबसूरत प्रकृति फ्रेश हवा और पर्यटन स्थलों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है हर साल दुनिया बाहर से लाखों पर्यटक तजिकिस्तान में आते जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि पार्वती रामास्वामी तजिकिस्तान में लगभग 2 साल के लिए इस पद पर काम कर रहे हैं और तजिकिस्तान उन्होंने लिए बहुत पसंद है
2: मेरा नाम पार्वती रामास्वामी है और मैं यहाँ तजिकिस्तान में यूनाइटेड नेशंस की प्रतिनिधि हूँ और मुझे यहाँ 2.5 साल हो गए हैं और मुझे यहाँ काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है मैं काफी जगहों पे मैंने यूनाइटेड नेशंस के लिए काम किया है और हमारा हर 3-4 साल के बाद तबादला होता रहता है अलग अलग देशों में और मुझे बहुत पसंद है तजिकिस्तान यहाँ के लोग बहुत ही नरम दिल के हैं और बहुत ही मेहमान नवाजी भी बहुत अच्छा करते हैं और तजिकिस्तान जो है पूरे विदेशों में और पूरे दुनिया में अपने क्लाइमेट एनवायरनमेंट पानी और हमारे जो बर्फीले पहाड़ होते हैं इन सब के बारे में खास तौर से जो है ग्लोबली लीड करता है आपने देखा होगा इस साल मई के महीने में यहाँ पे ग्लेशियर प्रिजर्वेशन कॉन्फ्रेंस भी हुआ जिसका सहयोग हमने बहुत किया है यूनाइटेड नेशंस और मेरे ऑफिस ने खास तौर से और यूनाइटेड नेशन के जितने भी यहाँ पे एजेंसीज हैं सब अलग अलग विषयों में काम करते हैं चाहे वो खाने के बारे में हो या तंदुरुस्ती के बारे में हो या औरतों की तरक्की के बारे में हो या सब लोगों की नौकरियां और पेशे की बात हो इन सब में हम लोग काम करते हैं तो मुझे यहाँ के लोग यहाँ की मेहमान नवाजी और यहाँ का जो डेवलपमेंट का मुद्दे हैं ये बहुत ही सही लगते हैं यहाँ के कंट्री के नीड्स के हिसाब से यहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से सो मेरे ख्याल से सरकार का जो विकास का जो प्लान है वो बहुत ही सही प्लान है और हम सब सरकार के साथ हाथ मिला के साथ साथ में काम करते हैं
0: प्यारे सुनने वालों यहाँ हम आपको श्रीमती पार्वती रामास्वामी के बारे में जानकारी प्रस्तुत करती है हमारे साथ रहे संयुक्त राष्ट्र 16 मार्च प्रति मूल की कविल मद्दाम रामास्वामी पार्वती को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने तजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंस कोऑर्डिनेटर के तौर पर नियुक्त किया है पार्वती ने तुर्की और अफगानिस्तान में विश्व खाद्या कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभाई थी गुतरेस के प्रवक्ता ने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पार्वती ने महासचिव द्वारा नियुक्त और मेजबान सरकार की पुष्टि के बाद तजिकिस्तान में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर का पद संभाला बयान के अनुसार श्रीमती पार्वती के पास विकास व मानवीय क्षेत्रों में रणनीतिक योजना तैयार करने जोखिम प्रबंधन लोगों से काम कराने संघर्ष विश्लेषण और मानवीय पहुँच आदि क्षेत्रों में 30 से अधिक वर्षों लोगों का अनुभव है। इससे पहले पर्वतीय तुर्किया में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधि और कंट्री डायरेक्टर थी। इस दौरान उन्होंने वंचित वर्ग के लोगों के भोजन व पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम किया। पर्वती ने भूकंप प्रभावित लोगों को आपातकालीन सहायता प्रदान करने की सरकार के प्रयासों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र बहुक्षेत्रीय प्रतिक्रिया कार्यक्रम में सक्रिय रूप से योगदान दिया। तजिकिस्तान अपने स्वादिष्ट भोजनों में सारे जहान में मालूम मशहूर है और यहाँ श्रीमती पर्वती कहती है,
2: मुझे बहुत पसंद है यहाँ का भोजन। मुझे खास तौर से जो ताज़ी सब्जियों का सलाद बनता है, सूप बनता है, और अलग अलग रीजन का जो खाना खास है वो भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे को तजिकी पुलाव बहुत पसंद है, खास तौर से जिस तरह से नवरोज की टाइम पे या खास प्रोग्राम के टाइम पे जो पुलाव पेश करते हैं, हम मेरे को बहुत पसंद है। और मैंने काफ़ी पुलाव खाया, हमारे हिंदुस्तान में भी पुलाव बनता है। मैं अफ़गानिस्तान में भी काम कर चुकी हूँ, अफ़गानी पुलाव भी मैंने खाया है, समरकंदी पुलाव मैंने खाया है। तो मुझे लगता है कि खास यहाँ के जो खाने के पदार्थ हैं और खाने की सामग्री है, काफ़ी अच्छे से लोग यहाँ यूज़ करते हैं। तो जितने भी लोग हमारे मेहमान भी आते हैं, उनको भी हम लोग पुलाव खिलाने ले जाते हैं, और बाकी शाशलिक वगैरह जो यहाँ का खाना है। नहीं, यहाँ के नान भी बहुत मशहूर हैं और मुझे भी नान बहुत पसंद है, और नान और छक्का हम लोग खाते हैं जहाँ भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं। और जैसे कुजांड का जो नान है वो दुशांबे के नान से अलग है, या आप खारलोन चले जाएँ या दरवोज चले जाएँ, तो हर जगह पर खास तरह से नान बनाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीका नान बनाने का है, और अलग अलग तरीके के भी नान हैं यहाँ पे। तो सब में स्वाद है, अलग अलग स्वाद है, अलग अलग चीज़ के साथ खाते हैं। कभी नान सूप के साथ खा लेंगे, कभी हम नान मक्खन के साथ खा लेंगे, कभी नान चका के साथ। तो हर खाने के साथ अच्छा लगता है नान।
0: तजिकिस्तान गणराज्य और विशेष रूप से राजधानी दुशांबे शहर हाल के वर्षों में आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध लड़ाई में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। इन पहलों को दुशांबे प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, और ये विभिन्न देशों और संगठनों के बीच संवाद और समन्वय के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। गौरतलब है कि दुशांबे को इस क्षेत्र के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है। सन 2004 में दुशांबे के एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहले यूनेस्को शांति शहर पुरस्कार से सम्मानित किया था। उच्च स्तर की सुरक्षा, विधायी विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने इस राजधानी को एक मजबूत राजनीतिक और कूटनीतिक केंद्र बना दिया है। हाल के वर्षों में दुशांबे ने कई अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के मेजबान की, जिन्होंने इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और खेलों के विकास को मजबूत करने में योगदान दिया है, जिनमें जूडो प्रतियोगिताएं, काफा फुटबॉल चैंपियनशिप, सांबो प्रतियोगिताएं, कुश्ती, टेनिस और मिश्रित मार्शल आर्ट प्रतियोगिताएं शामिल है। ये आयोजन दर्शाते है कि दुशांबे इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण खेल केंद्र बन गया है, जो खेल कूटनीति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत कर रहा। गेपाल ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट सन 2025 के अनुसार तजिकिस्तान गणराज्य कानून और व्यवस्था सूचक में दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में पहले स्थान पर है, जो सुरक्षा, स्थिरता और कानून प्रवर्तन में नागरिक विश्वास को मापता है। वैश्विक सुरक्षा रिपोर्ट सन 2025 पर आधारित एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि तजिकिस्तान के निवासी रात में सुरक्षित महसूस करते हैं और इन्हें कानून प्रवर्तन पर पूरा भरोसा है। याद दिलाना है कि तजिकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां और मान्यता तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति, राष्ट्र के नेता महामहिम इमोली रहमान की सफल नीतियों का परिमाण है। देश के नेतृत्व की पहल और निरंतर कदमों ने देश में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने में योगदान दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तजिकिस्तान की प्रतिष्ठा और भी मजबूत हुई है।

नेत्रित में शिक्षा संस्कृति और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हुआ। नए विद्यालय स्थापित किए गए। ताजिक भाषा में समाचार पत्र और पुस्तकें प्रकाशित हुई तथा युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों में भेजा गया। उनका विश्वास था कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य ज्ञान और शिक्षा पर निर्भर करता है। इसी कारण उन्होंने शिक्षा के विकास को विशेष महत्व दिया। नुसरतुल्ला मखसूम ने ताजिक भाषा और संस्कृति की रक्षा तथा विकास में भी महान योगदान दिया। उस समय अधिकांश सरकारी कार्य अन्य भाषाओं में किए जाते थे, लेकिन उन्होंने ताजिक भाषा को उसका उचित स्थान दिलाने और राष्ट्रीय संस्कृति को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास किया। वे अत्यंत मेहनती, मानवतावादी और जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील व्यक्ति थे। लोग उनसे प्रेम करते थे क्योंकि वे सदैव जनता की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते थे। वे अपने राष्ट्र और मातृभूमि के प्रति पूरी तरह समर्पित थे और उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन जनता की सेवा में समर्पित कर दिया। किंतु 1930 का दशक सोवियत संघ के अनेक महान व्यक्तित्वों के लिए दुखद काल सिद्ध हुआ। उस समय राजनीतिक दमन शुरू हुआ और अनेक निर्दोष लोगों को झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर दंडित किया गया। नुसरतुल्ला मखसूम भी इसे अन्यायी नीति के शिकार बनी। उन्हें जनता का शत्रु घोषित कर वर्ष 1937 में मृत्यु दंड दे दिया गया। ये ताजिक राष्ट्र के लिए अत्यंत बड़ी क्षति थी क्योंकि देश ने अपने एक महान और सच्चे पुत्र को खो दिया। बाद में ये सिद्ध हुआ कि वे निर्दोष थे और उनका सम्मान पुनः बहाल किया गया। ताजिकिस्तान की स्वतंत्रता प्राप्त के बाद उनकी सेवाओं का और अधिक सम्मान किया गया। वर्ष 2006 में उन्हें मरणोपरांत हीरो ऑफ ताजिकिस्तान की सर्वोच्च उपाधि प्रदान की गई। आज उनका नाम देशभक्ति, साहस और राष्ट्र निष्ठा के प्रतीक के रूप में ताजिक इतिहास में अमर है। नुसरतुल्ला मखसूम आधुनिक ताजिक राज्य के संस्थापकों में से एक के रूप में इतिहास में विशेष स्थान रखते हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन ताजिक राष्ट्र की स्वतंत्रता, प्रगति और समृद्धि के लिए समर्पित किया। उनका जीवन और कार्य आज की युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए देशभक्ति, त्याग और राष्ट्र सेवा का प्रेरणा स्रोत है। ये उल्लेख करना आवश्यक है कि राष्ट्र नायकों की पवित्र समृद्धि को सम्मान देने तथा महामहिम इमानीरामों के प्रयासों और पहल के परिणाम स्वरूप नुसरतुल्ला मखसूम के कब्र की मिट्टी का एक भाग मातृभूमि ताजिकिस्तान वापस लाया गया। ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम इमानीरामों स्वयं दुशांबे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचे और राष्ट्र के महान पुत्रों ताजिकिस्तान के नायकों नुसरतुल्ला मखसूम और शिरीनशो शोहतेमुर, साथ ही ताजिक इतिहास और संस्कृति के महान हस्ती निसूर मोहम्मद के कब्रों की मिट्टी के स्वागत समारोह में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया। इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक समारोह में राष्ट्र अध्यक्ष के प्रत्यक्ष उपस्थिति इस बात का स्पष्ट प्रमाण थी कि ताजिकिस्तान की सरकार और राज्य अपने राष्ट्रीय इतिहास, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, संप्रभुता और मातृभूमि के लिए समर्पित महान पुत्रों की सेवाओं को अत्यंत सम्मान और आदर प्रदान करते हैं। राष्ट्र के महान सपूतों की कब्रों की मिट्टी के स्वागत के सम्मान में हवाई अड्डे के परिसर को विशेष रूप से सजाया गया था। गंभीर सम्मान और गरिमा से भरे वातावरण में अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद सम्मान गोर्ड के सैनिकों ने ताजिकिस्तान के राष्ट्र नायकों के कब्रों की मिट्टी से युक्त उन विशेष पत्रों को, जो ताजिकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज से ढके हुए थे, अत्यंत आदरपूर्वक विमान से उतारा और औपचारिक सेना मार्च के साथ हवाई अड्डे के मुख्य प्रांगण तक पहुँचाया। ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति और राष्ट्रीय नेता महामहिम इमानीरामों ने नुसरतुल्ला मखसूम, शिरीनशाह शोहतेमुर और निसूर मोहम्मद के ऐतिहासिक सेवाओं को स्मरण करते हुए उनके कब्रों की मिट्टी वाले पत्रों के सक्षम गहरे श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया। इन ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षणों में महामहिम इमानीरामों ने विशेष रूप से ये उल्लेख किया कि नुसरतुल्ला मखसूम और शिरीनशाह शोहतेमुर आधुनिक ताजिक राज्य
व्यवसाय के संस्थापकों में गिने जाते हैं।

उन्होंने राष्ट्र के अस्तित्व रक्षा, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा, प्रशासनिक सीमाओं के निर्धारण तथा तजिकिस्तान गणराज्य की स्थापना में अमूल्य और ऐतिहासिक सेवाएं प्रदान की। वास्तव में राज्य स्वतंत्रता और राष्ट्र नेता मामाहिम मलिरहमों के विशेष ध्यान और प्रयासों के कारण आज मातृभूमि के महान पुत्रों की ऐतिहासिक सेवाओं का गहन अध्ययन और उचित सम्मान किया जा रहा है। उनके नाम और कार्यों को देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना, निष्ठा और राष्ट्र सेवा के आदर्श उदाहरण के रूप में सम्मान पूर्वक याद किया जाता है। ये महान और महामहिम पहल राष्ट्रपति मामाहिम मलिरहमों की संस्कृति प्रेमी, इतिहास निर्माता और मानवतावादी नीति के निरंतरता मानी जाती है। ये एक बार फिर सिद्ध करती है कि स्वतंत्रता के दौर में ऐतिहासिक समृद्धि का पूर्ण जागरण राष्ट्र के महान पुत्रों का सम्मान और राष्ट्रीय आत्मा चेतना को मजबूत करना राज्य नीति के महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुके हैं। इसके बाद इस ऐतिहासिक समारोह में सम्मिलित प्रतिनिधिमंडल मोटरसाइकिल एस्कॉर्ट दल के साथ दुशांबे केंद्रीय जमा मस्जिद की ओर रवाना हुआ। अब ये राष्ट्रीय नायक प्राचीन ताजिक राष्ट्र के समर्पित पुत्र अपने पैतृक मातृभूमि प्रिया तजिकिस्तान में, उस देश में जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया, अपना स्थायी विश्राम स्थान प्राप्त कर रहे हैं। निसंदेह ये कदम स्वतंत्रता के इन शहीदों की आत्मा को शांति प्रदान करेगा तथा वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देगा कि मातृभूमि अपने समर्पित और बलिदानी पुत्रों की महान सेवाओं को कभी नहीं भूलती, चाहे देर से ही सही उनका सम्मान अवश्य किया जाता है। निसंदेह ताजिक राष्ट्र के इन महान और समर्पित पुत्रों के प्रति ये सम्मान और श्रद्धांजलि प्रिया राष्ट्र नेता, बुद्धिमान मार्गदर्शक और महान नेतृत्वकर्ता मामाहिम मलिरहमों के नाम के साथ इतिहास के पन्नों में सदैव अमर रहेगी। प्यारे सुनने वालों, ये थे हमारे टिप्पणी जो आपने सुना है। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है हमारे रेडियो के साथ।